रस जह जा नहीं, आत्म रस जह जा नहीं, सो है खालसा रे, सो है खालसा रे, प्रभु मैं मोह मैं दास मैं, प्रभु मैं

अकाल मूर्त अजूनी सहभंग और प्रसाद जब आप सच युगात सच है भी सच नानक कोशी भी सच चक्र के निर्वर्ण जात हर पात नहीं जैन रूप रंग अरी प्रीत कुकर सत्य है अचल मूर्तन हो प्रकाश अमित तुझ के हिजय खूब चिंदन इंद्राम शाहु शाहान गणिज फिर भ्रमण में ही सुरनारा सुर नीत नीत मंडन कह सब सर्वनाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण समझ सतपुरे आयु शरण तुहारी मिले सुख नाम हर शोभा चिंता लाए हमारी और न सूझ दूजी ठार आर पर तो द्वारी लिखा छोड़िया लिखा छूट है हम निर्गुण ले हो वारी सर्वक्षण सदा मेरवाना सब नाम आवारी नानक दास संत पाछा करू राख लियु ए बारी सतगुर हुई दयाल ता श्रद्धा पूरिया सतगुर हुई दयाल ना कम हो चूरिया सतगुर हुई दयाल ता दुख न जानिया सतगुर हुई दयाल ता हर रंग मानिया सतगुर हुई दयाल ता जम का डर के हा सतगुर हुई दयाल ता सद ही सुख दयाल सतगुर हुई दयाल ता नव निध पाइया सतगुर हुई दयाल

सतनाम श्री वाहे गुरु जी सोरठ महला पंजवा आगे सुख मेरे मीता पाछे आनंद प्राप्त कीता आगे

अपने प्रयास करें प्रतपाला अदर तेरी हड़ियाई नित नानक नाम तिहाई अदर तेरी हड़ियाई नित नानक नाम तिहाई भाई जी का खालसा।

मांगो राम ते इक दान, आई बेग फॉर वन गिफ्ट ओनली फ्रॉम द लॉर्ड। मे ऑल माई डिजायर्स बी फुलफिल्ड मेडिटेटिंग ऑन एंड रिमेम्बरिंग योर नेम। ओ लॉर्ड, पॉज। मे योर फीट अबाइड विद इन माई हार्ट एंड मे आई फाइंड द सोसाइटी ऑफ द सेंट्स। मे माई माइंड not be afflicted by the fire of sorrow. May I sing your glorious praises 24 hours a day. May I serve the Lord in my childhood and youth and meditate on God in my middle and old age. O Nanak, one who is imbued with the love of the Lord is not reincarnated again to die.

राग गौड़ी दखनी विच ऋषभ धैवत कोमल अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस दे आरोह विच गंधार धैवत सुर वर्जित हैं। इस दी जाति औडव संपूर्ण वादी ऋषभ संवादी पंचम अते समा सवेर दा पहला पैर है। इस राग विच नाम मिले चले मैं नाल शब्द दा गायन कर रहे हैं प्रिंसिपल शमशेर सिंह करीर।

0: विषमाद नाद विषमाद वेद विषमाद जीव समाद भेद विषमाद रूप समाद रंग विषमाद रागे फिरे जन विषमाद पौन विषमाद पानी विषमाद अग्नि खेडे बिडानी विषमाद धरती विषमाद खानी विषमाद साध लगे प्राणी विषमाद संजोग विषमाद मजोग विषमाद पुत्र विषमाद भोग विषमाद शिवत समाज चला समाज दुख समाज राव समाज हृदय समाज दूर समाज विख्याद राजूर वेख डान रे समाज नारक बुझ पूरे भाग महला पहला
1: सैकुर सुनिए कुरुत पौ सार

सुबह करके और सात समुद्र की मन कह हो काट बनास्पति सगरी दिख बहु के लेखन खाज बने हो सारसता पकता करके जुग कोट गणेश के हाथ रखे हो काल कृपा ना बिनती

अंत न करो मैया कूट अपराध हमारे हो, कूट अपराध हमारे हो, अनक विधि समझाओ, अनक विधि समझाओ, हम अज्ञान अलप मत थोरी तुम आ

राग कल्याण भुपाली दियां सुरावलियां विच सर्व दुखां नूं निवारण वाले पार ब्रह्म परमेश्वर प्रति इउं जाचना कर रहे ने।

राग प्रभाती दे इस रंजक स्वरूप विच भगत कबीर जी उस खालक दी नूरानी होंद संबंधी समुच्ची लोकाई नू उपदेश दे रहे ने। लोगा परम ना भूलह भाई, खालक खलक खलक मह खालक, पूर रहे हो सब ठाई।

विभास ते प्रभाती रागां दे सुमेल राग विभास प्रभाती दियां मधुर सुरावलियां विच भगत कबीर जी उपदेश दे रहे ने। प्रगटी जोत मिटिया अंधियारा राम रतन पाया करत बिचारा।

नौवें पातशाह साहेब श्री गुरु तेग बहादुर जी राग जैजावंती दे अंतर्गत विषय विकारां विच ग्रसे नाम विहूणे मन की दशा का बयान कर रहे हैं। रे मन कौन गत होए है तेरी, एह जग मह राम नाम सो तो नहीं सुनह कान, बिखियन स्यो अति लुभान मत नाहिन फेरी।

परमेश्वर आप होवा रखवाला, परमेश्वर आप होवा रखवाला। शांत सहज सुख खिन में उपजे।

कूड़ पर जा कूड़ सर संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोना कूड़ पार।

खत्री शब्द सुर शब्द शुद्ध शब्द प्राकृत सर्व शब्द एक शब्द जे को जाने पे हो नाटक दास है सोई नंदन देव महला दूजा एक कृष्ण सर्वदेवा देव देवा आत्मा आत्मा बस।

शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मणे खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृते सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने देव नानक तंका दास सोई निरंजन दे एक शब्दं सर्व देव।

जो आज सत्संग विच आनंद आया है ओ राज गद्दी ते बह के भी जी, जो सुख प्रभ गोविंद की सेवा सो सुख राज ना लई। फिर प्यारी सत्संग राड़े राणी दे उद्दम नाल फिर राजा सत्संगी बन गए। स्त्री नु वाहिगुरु ने बड़ा फल दिता है। कई तो इन कहते अबला है, पर मैं तो कहना आदमी नालों स्त्री ज्यादा ताकत ज्यादा बल है। तुसी तक लो ना, स्त्री दो काराबाद कर दी है। स्त्री जो है ए दो कर, अपने पिता का घर भी आबाद कर दी है ते अपने सहुरियां का घर। आदमी इको घर ही आबाद करता है अगो तेरी वाहे। विचार दी बात है, इहदे अंदर बल ज्यादा होया ना। ताई बाबे ने स्त्री नू बड़ा माण दस्सिया, स्त्री दे हथ विच सब कुछ है, ए पति नू जैसा चाहे बना सकदी, इहदे अंदर ताकत। पर थोड़ा जिहा तहमल चाहीदा, थोड़ी जी विचार चाहीदी है, थोड़ा जिहा सत्कार चाहीदा है, तलखी विच नहीं आना चाहीदा। जे पति गलती करदा है प्यार नाल समझाणा है, समझदे आ समझदे आ तां पशु ही समझ जांदे ना। आखो श्री वाहिगुरु, सुनदे आ सुनदे आ इंसान है। तो मेरे कहण दा मकसद, स्त्री दे अंदर वाहिगुरु ने बड़ा बल रखे। तक लो राणी तारा ने अपने सत्संग दे शक्ति दे नाल राजे हरिश्चंद्र नू सत्संगी बनाया। सत्संगी नहीं बनाया, राजे नू धर्मी बनाया। राजा हरिश्चंद्र बड़ा धर्मी राजा है। और ए वस्तु कितों मिली? तेरी सात संगत ए सत्संग विचों मिली, नाम विचों मिली। तो आओ प्यारी सात संगत, आप भी धन हो जो ओ सत्संग विच आप सारे जुड़े हो। अज मैं तो यह समझदा भी सारा दिन ही तुसी सत्संग की अमृत वेले तो लै गए, अज सारा दिन नहीं। वह ए है गुरु की बख्शिश ते तुहाडा प्यार। जिस प्यार दे बूटे नू मालिक ने मेरा दे फल लाए, अमृत वेले भी कीर्तन, गुरुद्वारे भी कीर्तन, ते इधर सार तारा सिंह जी बच्ची जी तो सारे परिवार नू बाबा जी ने प्रेरिया भी घर सत्संग होना चाहिदा, कीर्तन हो जाए। बड़ा महत्व है, जिस घर विच गंदे जरासीम हो जाए ना ज्यादा, तो बीमारी पैण का खतरा हो जाता। फिर असि की करते हैं, DDT छिड़कते हैं ता जो जरासीम मर जाते, बीमारी तो बच जाते हैं। ते जिस घर च दुख कलेश आ जान, बाबा जी वचन करते सन उथे कीर्तन हो गया, आखो श्री वाहेगुरु, बाणी का अमृत छिड़को, नाम रूपी अमृत छिड़कोगे तो फिर की होगा। नसवंजो किल विखो करता कर, इथे गुरु आ जा तो इन्हां बच्चियां ने बड़ा उद्यम किया, बड़ी गुरु दी मेहर। यंग हन दोवें, पर मैं तो कहांगा जवानी सफल है, नहीं तो जवानी मस्तानी होंदी। जवानी एक ऐसा मोड़ है, चंगे पासे तो तुरना ही नहीं ना, चंगी गल तो करनी ही नहीं ना। किसे गुरमुख ने लिखिया भी एक जवानी दूजा धन पले, फिर साई दी मेहर होवे तां सीधा चले, नहीं तां डिंगा ही डिंगा तुरदा जांदा है। तो ओ नौजवान बच्चे जो रोज आके गुरुद्वार जुड़दे हन, ते इन्हां बच्चियां ने उद्यम कीता है, इन्हां दा उद्यम सफल, सत्संग कराया है, गुरु दी बख्शिश प्राप्त कीती है, फिर इन्हां दे उद्यम नाल आपां सारे गुरु नाल जुड़े हां। इह वी वड्डा पुन्न है। बाबा जी वचन करदे सन, किसे नू गुरु नाल जोड़ देना इस तों वड्डा पुन कोई नहीं है, किसे नू तोड़ देना इस तों वड्डा पाप कोई नहीं। तो इस परिवार ने जो कालना काली है, तो गुरु बाबा बख्शिश करे, आपां अरदास करनी है इन्हां बच्चियां दे सिर ते गुरु सदा मेहर प्रयात, राज जोग भक्ति शक्ति सारियां दातां गुरु बख्शे, ते इन्हां दे उद्दम नाल आपां जुड़े हां। सानू भी गुरु आप दे चरणां नाल जोड़ी रखे, ते नाम बाणी दी दात, ते कीर्तन दी दात
ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਹਾਨ ਉੱਚਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ, ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਤੋ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਾਰਨਾ ਫਿਰ ਪੜ ਲਈਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਾਮ ਦੇ ਰਾਤੀ ਜਾਏ ਸੁਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਰਾਤੀ ਜਾਏ ਸੁਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਰਾਣੀ ਤਾਰਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਸੀ।

आनंद साहब का पाठ करके कीर्तन भी समाप्त देंगे। अरदास होगी हुक्मनामा कड़ा प्रसाद दी देख बच्चिया वालों गुरमुख परिवार वालों जो सेवा है वो भी प्रवान करनी। तो आओ हम आनंद साहब का पाठ सारे मिलके करिए। गुरु नानक पातशाह मेहरबान सतगुरु आप जी दे प्यार वाले गुरसिख माई पाई साहब जी जिन्होंने आप जी ने बख्शिश करके ए दात बख्शी और आप जी दे दरबार ही जुड़ के आप जी दे बख्शिया खजाने सतगुरु आप जी दे पवित्र पावन शब्द का आदर करते हैं कीर्तन भेद गाउण अरदास कराते हैं। अंतरगामी गुरु जी आप अपने गुरसिखा बच्चे बच्चिया नामदान बख्शो कारोबार च वादे बख्शो सिखी जीवन सत्संग की दात बख्शो।

मैं अजिहे सुख तो की लेना है जेड़ा सुख नालों वधेरे दुख लेके आई जा रहा है। सुख मांग दुख आगे आवे, सो सुख हमो ना मांगिया भावे। वो सुख मैनू अच्छा नहीं लगता जेड़ा वधेरे दुख लेके आ रहा है। ते गुरु साहब भी अपनी बाणी दी इस पंक्ति दे विच एक कहिंदे ऐ संतो, ऐ ऐसे पुरुषों जिन्हां दे पास के इनसाइट है, ऐसे महापुरुषों ऐसे सतपुरुषों मेरे ते बख्शिश करो, कोई मैनू अजिहा सुख दसो, सो सुख मोको संत बतावो, कोई मैनू ऐसी कंफर्ट दसो जिस दे नाल तृष्णा बूझे मन तृप्तावो। आओ सारे रल के प्यार दे नाल इस पंक्ति नू गाइए, अगा फिर अज दी इस विचार चो असी गुरबाणी दे व्यू पॉइंट दे विचों ए लभीए कि सुख किस तरह मिलता है। आओ सारे रल के गाइए।

साहब कहते हैं चिंत खटोला, चिंता साड़ी मंजी है, खटोला कहते हैं मंजी, चिंता दी मंजी उते असी सब बैठे हैं, चिंतित ही दिस है सब कोई, अंतर चिंता नैनी सुखी नैन साड़े सुखे पे हैं, अखां साड़ियां कुछ लह कर रही हैं, अखां दे विच जो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट नहीं है, अखां दे विच कोई लाइफ दा जूस नहीं है, ड्राई है, अंतर चिंता नैनी सुखी मूल ना उतरे पोक, अंदर हंगरी हैं, थोड़ा है, कहंदे हैं फरीदा चिंत खटोला, जिस मंजी उते असी बैठे हैं वो चिंता दी मंजी है, वाण दुख अते जिस वाण दे नाल ओ मंजी बुनी गई है ओ है दुख, चिंता दी मंजी वाण दुख दे वाण दे नाल बुनी है, विरह है रब दा जो विरह है विछोड़ा है ओ है विछावन लेफ, ओ है उस दा बिस्तरा अते उस दे उते ओढ़न वाली जो जो कुल्ट है, ओढ़ना जो है, चिंत खटोला वाण दुख विरह विछावन लेफ, इस किस्म दा जीवन है, कहंदे हन ए हमारा जीवना तू साहिब सच्चे वे, आ साड़ी जिंदगी दी जो तस्वीर है, ए साड़ी जिंदगी दी पिक्चर है, ते आज दी जिंदगी दे विचों असी सब जो इनर पीस है, जो इनर कंफर्ट है, जो रियल कंफर्ट है, उस दी असी सारे तलाश कर रहे हैं। तो गुरु महाराज जी ने अपने इस शब्द दे विच ए दस्या है कि ऐ संतो मैनू को अजिहा सुख दसो जिस दे नाल मन दी तृष्णा बुझ जाए अते मन नू टिका आ जाए। कहंदे हन इंसान इस नू हासिल करन दे वास्ते बाकी जो कुछ भी करदा है कोशिश, उस दा जिक्र महाराज ने इस शब्द कीता है, उस दे मैं मुक्सर जिया आप नू फिर परिचय करा दें। कहंदे हन बहु रंग माया, बहुत रंगा वाली जो माया है, मैमन ऑफ मैनी कलर्स डिसीव्स पीपल इन मैनी मैनी वेज, बहुरंग माया बहु विध पेखी, कलम कागज सियानप लेखी। कहंदे हन जिन्होंने बहुत सारियां इंजीनियस राइटिंग्स लिखियां अपने कलमां दे नाल कागजां दे उत्ते, कहंदे मैं देखिया ओ भी अंदरों अशांत हन, महर मलूक होए देखिया खान, बादशाह मलूक अते देखे हन जेड़े लोग खान बने हन, अजेहे जो लोग हन कहंदे हन मैं उन्हां नू भी देखिया है, तांते ना ही मंत्र तां असवारी चोहा चंदन सेज सुंदर नारी, ये तमाम ऐशो इशरत दा समान जो भोगदे हन। कहंदे हन नट नाटक अखारे गया, जेड़े दिन रात पार्टीज दे विच ही रहंदे हन, जेड़े दिन रात सेलिब्रेशन दे विच ही रहंदे हन, जेड़े दिन रात एंटरटेनमेंट ही करते रहते हैं। कहते हैं उन्हें अखाड़िया दे विच भी मैं दुनिया बैठी देखी है, ता मैं मन संतोख न पाया, उत्थे भी किसी नु संतोख नहीं मिलता। अगे कहते हैं तखत सभा मंदन डोलीचे, बादशाह देखे हैं जो बड़े बड़े तख्ता होते, बहुत खूबसूरत जो दुलीचिया होते विराजमान होंगे, बहुत खूबसूरत सभावां दे विच मंडलां दे विच जो बैठते हैं, सुंदर मेवे सगल मेवे खान नू अनेका किस्म दे जो पदार्थ जिन्हां दे पास मेवे आधन, सुंदर बगीचे जिन्हां दे जो बगीचे दुनिया देखण नू तरसदी है। हजूर कहंदे हन अखेड़ बिरत राजन की लीला, राजियां महाराजियां दे जिन्हां दे पास शौक हन हॉबीज हन, शिकार करना जिन्हां दा शौक है, अजियां खेडां दे विच हमेशा गलतान रहण वाले लोग भी कहंदे हन मन ना सुहेला, कहंदे हन मन ना सुहेला परपंच हीला, उना दे मन भी जो सुहेले नहीं हन। ए सारा कुछ देखन तो बाद गुरु साहब अपना जो तजर्बा दसदे हन अते उपदेश दिंदे हन, कहंदे हन

अखी कुदरत अखां दे नाल कुदरत दे दीदार करो, कन्नी बाणी कन्ना दे नाल उस दे विस्माद नाद नूं श्रवण करो, मुख आखण सच नाम ते जबान तो फिर उसकी प्रशंसा करो। सो सारे सारे शब्द दी जो विचार दा सिट्टा ए निकलदा है, गुरु साहब ने कहा है अनेकां किस्म दे नाल इंसान अपने आप नूं सुखी होण दी जो कोशिश करदे हन, लेकिन सारे शब्द दी जो विचार इत्थे टिकी रही है कि किसे तरह भी मन सुहेला नहीं हुंदा। गुरु साहब फिर अगां चल के हुण दसदे हन, आओ अगली पंक्ति वल नूं वधीए कि सुहेला सुखी किस तरह हुंदा है। ओ कहंदे हन असीं अपनी जिंदगी दे विच सोचदे हां कि साडे पास धन आए ते असीं सुहेले हो जावांगे, सुखी हो जावांगे, लेकिन तजर्बियां तो यह पता लगता है कि साडा ए धन पदार्थ से बहुत ज्यादा गिनती इकट्ठा कर सकता है लेकिन सुख नहीं इकट्ठा करता। फिर वो केड़ा धन सानू चाहिए जिस दे नाल असी सुख भी हासिल कर सकी, उसका अगली पंक्ति जिक्र करते हैं। कहते हैं

तो कह देता है जगत निर्धन है, गरीब है, वाहेगुरु दे नाम तो बिना, वो वाहेगुरु वाले जीवन तो बिना इंसान गरीब ही रहिंदा है, चाहे वो कुछ भी बन जाए। जिस दे जीवन दे विच वाहेगुरु नहीं है वो गरीब है। गुरु अमरदास जी महाराज ने भी इस विचार की प्रोढ़ता की है। वो भी कहते हैं

थोड़ा फिर इसनों में दोहरा दें, बहुत तत दी गल कही है। अगर असी संसार तक आ विचार पहुंचा सकिए कि गुरु अमरदास जी महाराज ने की तत कढ़िया है, सुख किस तरह मिलता है, तो साड़ी सबना दी जिंदगी दी जो अंदरली अवस्था है वह बदल सकती है। कहते हैं श्लोक महला तीजा, इस जग में संती तन खटिया, जिना सतगुरु मिलिया आए, सतगुरु सच दृढ़ाया, सतगुरु सानू झूठ फॉल्स फेक पैरिशेबल नालों कढ़ के तत दे नाल रियालिटी दे नाल जोड़ देंदे हैं, रियालिटी दिखा देंदे हैं। और रियालिटी जिथे कोई गरीबी नहीं है, जिथे कोई दुख नहीं है, जिथे कोई मौत नहीं है, उस दे मतलक जिन्होंने उस रियालिटी नू पालिया हासिल किया, उन्होंने कहा ना ओ मरता ना हम डरिया, ना ओ मरता ना हम डरिया, ना ओ बिन से ना हम कड़िया, ना उस भूख ना हम को भूखे, ना उस दुख ना हम को दुख। ए अवस्था बनती है जिन्होंने सच नू देखिया है, तत नू देखिया है। उन्हां दे मतलब ए क्या है, गुरुमुख अंतर सहज है, उन्हां दे अंदर टिकाओ ही बनिया रहिंदा है, बाहरली कोई भी टर्मोइल उन्हां दे अंदरले टिकाओ नू जो है वो भंग नहीं कर सकती। गुरमुख अंतर सहज है, मन चढ़िया दसवे आकाश, तिथे ऊंग ना भुख है, हर अमृत नाम सुखवास, तिथे दुख सुख व्यापत नहीं, जिथे आत्म राम प्रगाश। गुरु साहब ओ मन दी अवस्था सानू दिंदे हन, कहंदे हन इस जग में संती तन खटिया, जिना सतगुरु मिलिया आए, सतगुरु सच दृढ़ाया, इस तन की कीमत कहीं न जाए, इत तन पै भुख लथी सुख वस्या मन आए, लेकिन जिना को तुर लिखिया तिनी तिनी पाया आए, बाकी साडे वर्गियां दी जो दशा है ओ ते ए क्या है, मनमुख जगत निर्धन है। मनमुखा दा जो मन दे पिछे ही चलदे हन, जेड़े नित नित खुशियां मन करे, जेड़े दिन रात मन दियां खुशियां दे पिछे पै रहंदे हन।

अनदिन फिरदा सदा रहे, भुख ना कदे जाए, शांत ना कदे आवे, न सुख वसे मन आए, सदा चिंत चितवदा रहे, सहसा कदे न जाए, नानक बिन सतगुर मत पवी। कहंदे हन सतगुरु तो बिना, गुरु दी विचार तो बिना, कहंदे हन इंसान दी जो मत है ओ फुट्टी रहंदी है, पवी रहंदी है। नानक बिन सतगुर मत पवी। सतगुरु नु मिले ता शब्द कमाए, तो फिर किस तरह सुख मिलता है।

इसका थोड़ा जा अर्थ समझ ले। फरीद साहब ने श्लोक उचारिया है रब दी तरफ तो, ये रब वालों श्लोक उचारिया है कि रब कह रहा है कि इंसान आप सवार है, अगर तू अपने आप नु सवार लवे मैं मिले फिर तेन मैं मिल सकदा, मैं मिलिया सुख होए अते मेरे मिलन नाल ही तेन सुख हो सकता है। यानी फरीद साहब ने तत ये क्या है इस दे विच के इंसान अगर तू आपे नु सवारे आपे नु समझे ते आपे नु वाहिगुरु दे नाल जोड़े ते तेनु वाहिगुरु मिल सकदा है ते वाहिगुरु नु मिलन नाल ही सुख हुंदा है।